0: Bel Betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807. Of mail naar info@ujala.nl.
1: Hi Judy, aren't you trying this? It's very nice, have more. Hi Sheva.
2: आप खा रहे कि नहीं खा रहे?
3: जी नहीं, मैं डाइटिंग कर रही हूँ।
1: डाइटिंग?
2: लगता तो नहीं।
3: है?

गुलाबी रात के साए तले इन मासूम बच्चों की रात कितनी भयानक है, कितनी काली है।

देश का बचपन भूता हो, फिर उसकी जवानी क्या होगी, फिर उसकी जवानी क्या

जब भी देश की बात होती है ऐसे लोग मजाक में उड़ा देते हैं। ये लोग जो पीते हैं वो शराब नहीं अनगिनत लोगों का खून है। और आज जब बच्चे भूख से पिलकते हैं तो ऐसे लोग अनाज पांव तले कुचलते हैं। ऐसे फूल इनके हाथों कुचले जाते हैं मसले जाते हैं। लोगों के पास तन ढकने को कपड़ा नहीं और इन्हें तन ढकने का शौक नहीं। ये गुलाबी रात वाले काली रात के जिम्मेदार शबाब और शराब के नशे में चूर मखमल के बिस्तर पर सोने वाले इतना भी नहीं सोचते कि आज इन्हीं की रक्षा के लिए इनके अपने भाई

इश्क में तेरे हो गए हम लंगरे ना जंगल में भगाओ जी जाओ जी जाओ जी जाओ जी।

0: बस बस बस बस बस बस बस पूछा है मैंने इनका पता।
1: अरे
0: तेरी आंखों के सितारों से, रुखसारों से, बीमारों से, बेकारों से, लोहारों से, आवारों से, गमखारों से, बंजारों से, लकड़हारों से, लकड़हारों से, ना जाने वो किधर गए।

0: are.
1: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: ये दीपों का त्योहार बड़े हर्ष और उल्लास के साथ मनाया जाता है। इस अवसर पर सोने चांदी के सिक्कों के रूप में भगवती महालक्ष्मी का पूजन किया जाता है। रात्रि के समय घर घर में दीपक जलाए जाते हैं। अपने मकानों को शुद्ध स्वच्छ करके खूब सजाया जाता है ताकि लक्ष्मी जी प्रसन्न होकर उनमें निवास करें। एक कथा के अनुसार कहा जाता है कि जब भगवान श्री रामचंद्र जी सिया जी और लक्ष्मण जी के साथ 14 साल का वनवास काटकर अयोध्या लौटे तो उनका राज तिलक किया गया। इस खुशी में अयोध्या के नर नारियों ने अपने घरों में दीपक जलाए थे। वही परंपरा आज भी चली आ रही है। प्यारे भक्तों, इस पावन उत्सव के दिन महालक्ष्मी चालीसा का पाठ करने से मुंह मांगा फल मिलता है, खुशियां मिलती हैं और शुभ लाभ मिलता है। आप सबको दीपावली की बहुत

एक तेरा साथ और हमको दो जहां से प्यारा है, लता जी एंड मोहम्मद रफी साहब से गीत आप सुने फिल्म वापस से निकाला हुआ। और सुनने वालों, उजाला रेडियो, आपको मालूम है ना कि खुशी हो या गम, उजाला रेडियो है आपका साथ हरदम।

जिस्म दो है और एक जान। मोहम्मद रफी साहब की आवाज, फिल्म का नाम तेरे घर के सामने, उजाला रेडियो है ये। De leukste, ja toch? En de gezelligste, ja toch?

I have been a great admirer of this wonderful person, Mohammed Rafi. मैं हमेशा सोचता था कि भाई ये ऐसे talent बहुत rarely मिलता है, बहुत respect में मैं करता था उनको. रफ़ी साहब हमारे हिंदुस्तान के संगीत जगत में मेल सिंगर की हैसियत से सबसे बड़ा गाने वाला है.

के साथ गमी है, पैदा इसके साथ मौत। उजाला रेडियो का प्रोग्राम में मृत्यु समाचार आप सुनिए। अम्स्टर्डम से छोटी बहन कमलावती सुकरन सिंह और बेटा रायन रामपरिशन बहुत दुख के साथ ये सूचना को कर रहे हैं कि बीते हुए मंगलवार को 75 साल की आयु में फैफन सीफन तखियार औत छोटी बहन कमलावती सुकरन सिंह की बड़ी बहन रायन रामपरिशन की मौसी रोटरडम रॉसफेल्ट की रहने वाली विधवा सीलावती कल्पू सुकरन सिंह की मृत्यु रोटरडम में हो गई है। सीला के नाम से लोग पहचानते और पुकारते थे। अम्स्टर्डम से छोटी बहन कमलावती सुकरन सिंह और बेटा रायन रामपरिशन बहुत दुख के साथ ये सूचना को कर रहे हैं कि बीते हुए मंगलवार को 75 साल की आयु में फैफन सीफन तखियार औत छोटी बहन कमलावती सुकरन सिंह के बड़ी बहन रायन रामपरिशन के मौसी रोटरडम रॉसफेल्ट की रहने वाली विधवा सीलावती कल्पो सुकरन सिंह की मृत्यु रोटरडम में हो गई है। सीला के नाम से लोग पहचानते और पुकारते थे। अर्थी से विदाई आप ले सके।

रात में 6:30 बजे से 7:30 बजे तक मोरखन जोंदगाफन फन हालफ जीफन तोत हालफ अख्त मोनिटा मेमोरियम के मुर्दालय लंगनहॉर्स्ट होंदर्त रोटरडम में और अर्थी के दाह क्रिया आने वाले मंगलवार के दिन में 11 बजे दिनसडाग आंस्टांदे 11 किए जाएंगे। मोनिटा मेमोरियम क्रिमाटोरियम लंगनहॉर्स्ट होंदर्त रोटरडम में। और जानकारी के लिए तार का नंबर है 06-33-84-77 सुनने वालों से निवेदन है सूचना को और आगे तक पहुंचा देने के लिए। उजाला रेडियो परिवार सुकरण सिंह के दुख में शामिल है।

0: you are.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Ujala Radio. देश भर में सुनाई देता है फिया दे बी प्लस तोर घर में तोर ऑटो में तू बता दे सबको इसे उजाला रेडियो दे बी प्लस पर देश भर में उजाला रेडियो द क्रोस्ट कैट द बेस्ट उजाला रेडियो

होई होई के कुड़िया शेर दिया दिलेर मेहंदी नेहा कक्कर एंड तानिश्क बागजी से आप इस गीत को सुने एंड अगला गीत लंबा

लंबोर्गिनी। हाँ मोई गाना लंबोर्गिनी के तबला तबला रिमिक्स आप सुने मोई लगे है तो। तब एगो और पेश है लाल घगड़ा गीत का बोल उजाला रेडियो पर।

आप सुन रहे हैं उजाला रेडियो, आपका फेवरेट रेडियो स्टेशन यू आर। उजाला रेडियो के साथ ये संगीत का सफर यहीं समाप्त होता है। सुनने के लिए दिल से धन्यवाद।

0: उजाला के ऑल टाइम फेवरेट्स जो हर दिल को खुश कर देते हैं, सुनिए और गुनगुनाइए।
1: सुनावे लागे एक सुन

रात और दिन के देवे है तोर साथ, के तोर साथ सूते है, के तोर साथ जागे है, केकर साथ तू ओतो में घूमे है, और केकर साथ तोर घर के सब काम होवे है। उजाला रेडियो के साथ तो हाँ, हमेशा सुख में और दुख में उजाला रेडियो तू जा।

के साथ गमी है पैदाइश के साथ मौत। उजाला रेडियो का प्रोग्राम में मृत्यु समाचार आप सुनिए। आम्स्टलफेन से परिवार अवतार अक्लू बहुत दुख के साथ ये सूचना को कर रहे हैं कि बीते हुए शुक्रवार को 88 साल की आयु में अख्तन तख्त खियार औत श्रीमान जॉनी अवतार की सास श्रीमती शरीता अवतार अक्लू की मां, माइकल और कृष्ण के नानी अश्विता की ननिया सास अर्शानो की पर नानी, आम्स्टरडम की रहने वाली विधवा एसलिन रामदीन अक्लू की मृत्यु आम्स्टरडम में हो गई है, जो कि स्वर्गीय श्री रामदेव अक्लू के विधवा थी और पहले पारामारिबो खोनख्रेबसरात के निवासी। आम्स्टलफेन से परिवार अवतार अक्लू बहुत दुख के साथ ये सूचना को कर रहे हैं कि बीते शुक्रवार को 88 साल की आयु में अख्तन तख्त खियार औत श्रीमान जॉनी अवतार की सास श्रीमती शरीता अवतार अक्लू की मां, माइकल और कृष्ण के नानी अश्विता की ननिया सास अर्शानो के पर नानी, आम्स्टरडम की रहने वाली विधवा एसलिन रामदीन अक्लू की मृत्यु आम्स्टरडम में हो गई है, जो कि स्वर्गीय श्री रामदेव अक्लू के विधवा थी और पहले पारामारिबो खोनख्रेबसरात के निवासी। अर्थी से विदाई को आप ले सकेंगे आने वाले सोमवार रात में 7 बजे से 8 बजे तक मांदाखाफंत फन जी फनूर तोत अख्त उर उत्फार्ट सेंट्रम वेस्ट खार्द के मुर्दालय ओक मेरवेख 275 आम्स्टरडम ओस्टडॉर्प में, और अर्थी के दाह क्रिया आने वाले बुध के दिन में 2:30 बजे वोन्सदाख आंस्टांद हल्फ द्री किए जाएंगे। वेस्ट खार्द क्रिमाटोरियम ओक मेरवेख 275 आम्स्टरडम ओस्टडॉर्प में। सुनने वालों से निवेदन है सूचना को और आगे तक पहुंचा देने के लिए उजाला रेडियो के साथ आखिरी सफर एतफार्त फुरजोरखिंग परिवार अवतार और परिवार अक्लू के दुख में शामिल है।

0: जब प्राण तन से निकले।
1: उजाला रेडियो का प्रोग्राम में अभी मृत्यु समाचार को आप सुने।
2: Wil jij Ujala Radio ook op je smartphone en tablet ontvangen? Ga dan naar de App Store en download de Ujala-app.

Maria. फिल्म सागर का गीता शाजी एंड एसपी बाला सुब्रमण्यम, इन दोनों की आवाजों में आप सुने उजाला रेडियो पर। नोखंकेरा शाजी मदन मत किशोर कुमार राहुल देव बर्मन के साथ यादों की बारात। उजाला रेडियो है

0: जी मेम साहब।
1: कौन? मैं?
0: जी हाँ, आप ही से कह रहा हूँ। यहाँ आएंगे आप? क्या नाम है आपका?
1: मेरा नाम सुनीता।
0: लवली नेम।
1: थैंक यू।
0: गाएंगे आप मेरे साथ?
1: ना, डर लगता है।
0: डरने की क्या बात है, मैं आपके साथ गाता हूँ।

अगर ये दोनों हमारे साथ गा सकते हैं तो आप सब क्यों नहीं गा सकते? रेडी रेडी रेडी रेडी यस 1 2 3 4 ला ला ला ला ला ला। बस बस बस बस बहुत हो गया बहुत हो गया बहुत हो गया। म्यूजिशियंस आप लोग मत बजाइए। रेडी 1 2 3 4 ला।

नाना नानी दादा दादी काका काकी मामा मामी फुआ फुफा बहन और ए भाई तो भी सुने है तो उजाला रेडियो।

0: होसा धीरे तेरे बिना गया जीना, किरण केदार के आवाज में आपने सुने हैं।
1: बिना तेरे बिना भी क्या जीना।
0: Jala Radio, je heet Sunwallow. En ik ben hier vandaag in GA Event Center met de live uitzending voor Jala Radio.

हाल है जहाँ पे तू नाच सके है, ब्रासा कर सके है, बातें कर सकते हैं. अनतुल ऑन फूड हॉल, फूड हॉल यहाँ पर जहाँ के जहाँ पर तू जाए के मोई से अस्तीले से बैठ के खाए सके हैं. एंड वीर शर्मा इज फ्रॉम पायल रेस्टोरेंट, हाय कम सो मेटीन हियर आंसलुइटन. Even hem vragen wat voor lekkers hij vandaag heeft meegenomen. En de mensen stromen hier binnen. Zorg dat je ook op tijd hier bent. En dat je dus niks gaat missen hier.

0: नहीं।
1: मेरे ख्याल से अब कुमार सानू को यहाँ पर नहीं लाना चाहिए, आपको शो देना चाहिए।
0: कुमार सानू 6 सितंबर को आ रहे हैं।
1: हाँ तो मालूम है कि वो आ रहे हैं, लेकिन मेरा कहना कि आप यू आर सिंगिंग जस्ट लाइक हिम,
0: मैं
1: तो कुमार सानू की जरूरत नहीं है।
0: जी हाँ, मैं एक शो प्लान कर रहा हूँ आने वाले टाइम में।
1: हाँ,
0: मैं रहूँगा और उसमें और भी कुछ सिंगर्स रहेंगे।
1: अच्छा अच्छा,
0: तो हम वो शो करेंगे और आई होप कि
1: आप यहाँ पर ब्रांस फेस्ट पर हैं, लेकिन आप नहीं आए अपने आप के लिए, लेकिन आप अपने पूरे रेस्टोरेंट के जो लोग हैं, रेस्टोरेंट पायल का है
0: जी।
1: रेस्टोरेंट पायल कहाँ पर है?
0: रेस्टोरेंट पायल है देवेंद्र पाद अलमेर,
1: अलमेर में।
0: या
1: और वो जो रेस्टोरेंट जो था बीच शहर में आमस्टरडम में, वो वही नहीं रहा?
0: वो अब नहीं है, वो
1: अब आप चल गए अलमेर।
0: जी मैं अलमेर में आ गया,
1: वहाँ आराम से आप वहाँ पर हैं
0: जी।
1: रेस्टोरेंट पायल अलमेर का है, लेकिन आप यहाँ पर भी हैं, यहाँ के लोग के लिए पेट पूजा करने के लिए, भोजन के लिए आप स्वादिष्ट खाने बनाने के लिए बनाए हैं।
0: बिल्कुल, हम हैं यहाँ पर अपने स्टैंड के साथ, हमारे पास बहुत स्वादिष्ट खाना है, ऑथेंटिक इंडियन फूड,
1: ऑथेंटिक
0: लेकर बटर चिकन विद राइस, लेकर अमृतसरी छोले, चिकन बिरयानी, वेजिटेबल बिरयानी,
1: अच्छा
0: रस मलाई, गुलाब जामुन।
1: अब तो मुझे भूख लग गया।
0: आप आइए, हमारा स्टैंड आपके बिल्कुल सामने है, बिल्कुल सामने है।
1: हाँ सामने है। लेकिन इतनी अच्छे अच्छे इंडियन खाना, ऑथेंटिक खाना है आपके पास, गर्मी गर्मी है और आराम से लोग यहाँ पर बैठ खा सकते हैं ना?
0: जी हाँ, हमारे सामने पूरा लाउंज है।
1: हाँ,
0: तो आप आइए, यहाँ पर लोग आ सकते हैं और आकर आराम से बैठ करके खा सकते हैं।
1: हाँ,
0: और आई होप कि अभी सब लोग सुन रहे होंगे, वो सब लोग यहाँ आएंगे और काफ़ी बिजी होगा।
1: हाँ,
0: हम तैयार खड़े हैं उनके लिए।
1: आप तैयार हैं, आज रहेंगे, कल रहेंगे,
0: आज भी हैं।
1: आपको कैसे लग रहा है यहाँ पर? अभी अभी बहुत यहाँ पर बिजी हो जाएंगे और कल भी और भी बिजी होने वाले हैं
0: जी।
1: एंड यहाँ पे ये फूड हॉल आपको कैसा लगता है? यहाँ पे
0: फूड हॉल बहुत अच्छी जगह है, चारों तरफ स्टैंड्स लगे हुए हैं, बीच में जगह है लोगों के बैठने के लिए।
1: हाँ,
0: आराम से बैठ करके लोग अपना भोजन का आनंद ले सकते हैं।
1: हाँ,
0: और इट्स अ वेरी नाइस प्लेस, और स्टेज तो खैर है ही।
1: हाँ अच्छी, ये रेस्टोरेंट पायल के सबसे क्या कहते हैं, व्हाट इज द, इसका अगर लोग कुछ आपके पास खरीदना चाहते हैं खाने के लिए, तो आप कौन सी आप एडवाइस दे सकते हैं कि ये आप ज़रूर टेस्ट करना?
0: देखिए मेरे पास सारी
1: सब तो ठीक है।
0: हाँ, लेकिन मैं
1: एक तो चीज़ होगा जो आप कहेंगे कि ये आपको ज़रूर टेस्ट करना है,
0: बटर चिकन राइस के साथ।
1: बटर चिकन राइस के साथ
0: जी। हाँ, और जो लोग वेजिटेरियन हैं उनके लिए वेजिटेरियन बिरयानी।
1: हाँ,
0: और छोले राइस बहुत बढ़िया है।
1: और छोले भटूरे आपके पास भी है?
0: नहीं, भटूरे आज नहीं है।
1: लेकिन वो इंडिया के, वो साउथ इंडिया में होते हैं ना?
0: नहीं, वो नॉर्थ इंडिया से हैं।
1: नॉर्थ इंडिया के
0: छोटे छोले भटूरे बहुत मशहूर हैं।

अविशा, अविशा के आवाज़ में हम आपको नगमा सुना के वो जा रहे हैं. अविशा दियो ये वजीरो एंड दी हैव सामन मेट द क्रू फॉन सारेगामा हुन ऑप्ट्रेडन अल गहद.

0: से प्यार आया।
1: उजाला रेडियो यहीं से नवलो, इट इज नाउ 6 मिनट फॉर हाफ 7। अभी आप सुन लेना सात बजे के बाद ना द कमर्शियल, दान हैव वे असोसिएट मरीज से मचा।

अभी आपने सुना है मिस्टर ब्लैक की आवाज़ में पेश किया गया है। सुनो लो वहानु लाश रनार देत नंबर और भी गाने वाली हैं लेडी संजना डी से फन आफन तो ही इन जिया इवेंट सेंटर ब्रासा फेस्ट हीर इन जिया इवेंट सेंटर। Dit kan natuurlijk geen Lady Sanjana zijn. Lady Sanjana komt nu aan.

Dit is Ujala Radio, jouw geluid, jouw vibe. Je luistert naar Ujala Radio, Ujala Radio, voel de energie. Hier is Ujala Radio, Ujala Radio. अगर आपके घर पर जन्मदिन है, सालगिरह है, जो भी खुशियां हैं, उजाला रेडियो पर अगर आपको फरमाइश देना है, 15 फरमाइश, 15 आवाजें फॉर मोर 100 यूरो ऑफ उजाला रेडियो, स्टूड योर ईमेल नर info@ujala.nl, info@ujala.nl, 15 आवाजें फॉर मोर 100 यूरो ऑफ उजाला रेडियो।

साथ गमी है, पैदाइश के साथ मौत। उजाला रेडियो का प्रोग्राम में मृत्यु समाचार को आप सुनिए। अम्स्टर्डम से छोटी बहन आशा सुकरन सिंह और परिवार बहुत दुख के साथ ये सूचना को कर रहे हैं कि बीते हुए मंगलवार को 75 साल की आयु में फैफन जीफन तक यार और स्वर्गीय पिता श्री चतुर्गुण सिंह सुकरन सिंह और स्वर्गीय माँ श्री सुखदेव सुकरन सिंह जरबंधन की बेटी अम्स्टर्डम से छोटी बहन आशा सुकरन सिंह की बड़ी बहन छोटकू तो कीर चौधरी की बड़की सनी चौधरी बॉबी चौधरी और शायन चौधरी के मौसी मरियम चौधरी और नैना चौधरी के मौसी आसास एलियाना चौधरी और शान चौधरी के आजी रोटरडम रॉसफेल्ट की रहने वाली विधवा सीलावती कल्पू सुकरन सिंह की मृत्यु रोटरडम में हो गई है। सीला के नाम से लोग इन्हें पहचानते और पुकारते थे। अम्स्टर्डम से छोटी बहन आशा सुकरन सिंह और परिवार बहुत दुख के साथ ये सूचना को कर रहे हैं कि बीते हुए मंगलवार को 75 साल की आयु में फैफन जीफन तक यार औत स्वर्गीय पिता श्री चतुर्गुण सिंह सुकरन सिंह और स्वर्गीय माँ श्री सुखदेव सुकरन सिंह जड़बंधन की बेटी अम्स्टर्डम से छोटी बहन आशा सुकरन सिंह के बड़ी बहन छोटकू तोकीर चौधरी की बड़की सनी चौधरी बॉबी चौधरी और शायन चौधरी की मौसी मरियम चौधरी और नैना चौधरी के मौसी आसास इलियाना और शान चौधरी के आजी रोटरडम रॉसफेल्ट की रहने वाली विधवा सीलावती कल्पू सुकरन सिंह की मृत्यु रोटरडम में हो गई है। सीला के नाम से लोग पहचानते और पुकारते थे। अर्थी से विदाई को आप ले सकेंगे कल इतवार के रात में 6:30 बजे से 7:30 बजे तक। Zondagavond van 6:30 tot 7:30 Monita Memoriam ke Murdalay Langenhorst 100 Rotterdam mein aur arthi ke dah kriya aane wale mangalwar ke din mein 11 baje dinsdag 11 uur kiye jayenge crematorium Monita Memoriam Langenhorst 100 Rotterdam mein aur jankari ke liye tar ka number hai 06 33 477 06 33 088 477। सुनने वालों से निवेदन है सूचना को और आगे तक पहुंचा देने के लिए उजाला रेडियो परिवार सुकरन सिंह और परिवार कल्पू के दुख में शामिल है।

सवा सात का वक्त है मेरे प्यारे सुनने वालों, दिस इज यू आर उजाला रेडियो और मैं हूं रतन राम दुलारे पांडे। हैटिस ब्रासा फेस्ट वीकेंड मेरे प्यारे सुनने वालों, आज शनिवार पहला दिन ब्रासा फेस्ट का जिया सेंटर, जिया इवेंट सेंटर डनहाग में, और शनिवार है मेरे प्यारे सुनने वालों, इस 29 अगस्त लास्ट सैटरडे इस महीने अगस्त का। उम्मीद और आशा करते हैं कि आप भरपूर भी एंजॉय कर रहे होंगे वीकेंड। एंडमैन से दी नतुलक नीत सैन खान द ट्वेल्व लार्स ऑफ द मैन से दी लीफर टॉयस ब्लाइफ, उन सभी के लिए

पर है और काम के कारण नहीं जा पाएंगी ऑफ नेचुरल ऑक्यूपेंट बैचलैंड. किसी भी वजह से अगर आप गए नहीं तो आप निराश ना हो. मैं हूं ना शुभरात्रि मेरे प्यारे सुनने वालों. मैं हूं रतन राम दुलारे पांडे, जैसे मैंने कहा, और आप सभी प्रिय सुनने वालों को मेरा प्यार भरा नमस्कार. और आरापर से सैटरडे नाइट फीवर पेश करेंगे आज प्रोग्राम एकदम लाइव एंड डायरेक्ट यूआर के स्टूडियो रतनराम से. तो तहे दिल से स्वागत हम करते हैं आप सभी का. एंड क्वीन इट होत वंदा गत लोपन वंत गा ऑन द आवर इधर केर टुरुख नार कोलीगा लॉयड महाबीर जो इवेंट सेंटर में है, जिया इवेंट सेंटर में है और जहां से वो लाइव प्रोग्राम भी सजा रहे हैं. एंड द ड्यूटी अलंताइज और इसी तरह से वो भी सजाएंगे मेरे साथ ये प्रोग्राम. और जहां तक मौका मिलेगा डन क्रैक हो नोखीर नारवत इंटरव्यू में द आर्टिस्ट तो सुनते जाइएगा और आप एंजॉय करें. वेल, हमारा कोशिश यही है कि आप ऐप करेंगे स्टूडियो में 02-3630-0800 तो हम जरूर भी आज कोशिश करेंगे आपके लिए गीत चलाने का. Dus stuur een appje naar de studio 020-363-0800. Hi, hello, kehne ke liye. To main koshish karunga, zarur se zarur 8 baje ke baad, tu jaane toh, aap sabhi ke liye, kuch na kuch chalane ke liye. Wil je een rustige nummer, geef dat wel aan. En wil je een lekkere chalta nummer of een bite hug, laat het ook weten. और रही आपके दफ्तर की कार्रवाई मेरे प्यारे सुनने वालों, आपके हर एक काम काज जानकारी इंफॉर्मेशन के वास्ते विल ये फरमाइशें दून, विल ये जरूरी खबरें दून, मौत की खबरें, जो भी जानकारी इंफॉर्मेशन आप प्राप्त करना चाहोगे, जो भी काम काज आप करवाना चाहोगे, सोमवार से शनिवार फमान रखते तो मैं सात रख सुबह में 10 बजे शाम में 3 बजे तक आप तार कर सकते हो स्टूडियो को, नहीं सॉरी दफ्तर को दफ्तर को, और वो भी दफ्तर के तार पर 02-4090807 02-4090807. Maar natuurlijk gaat het via de mail wat sneller. Lagataar, ciao bis gante, dan heb je niet aan tijd, ben je niet aan tijd gebonden. Jab bhi aapko Ujala Redo ka zarurat pare, aap mail kar sakte hain. अपने कामों काज के लिए जानकारी इंफॉर्मेशन के वास्ते info@ujala.nl. एंड मेरे प्यारे सुनने वालों, चेक ऑन सोशल टिकटॉक इंस्टाग्राम फेसबुक एंड नेटवर्क यूट्यूब चैनल जो हमारा है, गेट कनेक्टेड विद उजाला रेडियो. ऑल्स जो भी हम वहां पर छापते हैं आसानी से आप उसे शेयर कर पाओगे, देख पाओगे, कमेंट्स दे पाओगे, किसी को टैग कर सकोगे. और गाने जो हम अपलोड करते हैं उजाला रेडियो के यूट्यूब चैनल पर, या खानी उगलाइसर देल लेकर खनीत और का बोली. मेरे प्यारे सुनो लो, नीड फॉर कार्चेस एंड दैट सॉर्ट थिंग्स हियर ना द स्टूडियो एप टिकटे के लिए, वह अभी आप जा सकते हैं. आज ब्रासा फेस्ट का पहला दिन एनएचएस, आज मैं देखता हूं रात्रि में 1 बजे तक बहुत सारे बैंड जो है आर्टिस्ट अपना कमाल दिखा चुके हैं. मजे का नुक स्टेज खान एंड कूपिया कार्ड अल्श ब्रीफ फिया द वेबसाइट www.brasafest.nl. Aan de poort kan het ook, maar het is makkelijker als je dat even met je mobiel even online doet. Check voor de links allemaal op onze social. Aur bahut sare logon ne pathaye hain mujhe photos ki bhaiya aap kahan ho. Lekker eten hier, lekker drinken hier, lekker muziek hier. Ujala Radio fir ek baar ek top hangama event rachaye hain और हम लोग एंजॉय कर रहे हैं. तो मैं कहा आप एंजॉय करें. कुछ ऐसा ही आज का दिन निकला है, कुछ ऐसा दिन का

planning था कि मैं आज जा नहीं पाऊंगा, लेकिन मोरखनन बेनेकर वेल इन द नाग। तो मेरे प्यारे से लातों में बीच खान शेक अट इस वीकेंड आफ्टर ऑल रमेश्वर का एक मेटली द गसेलिगस्ते बैंड सबरोसो हियर ऑन यू आर खनीत फॉर योर वीकेंड मेरे प्यारे से नॉलर दिस इज यू आर लाइव फ्रॉम आउट स्टूडियो रोटरडम।

सबरोसो मेरे प्यारे सुनो वालों, सबरोसो आज का ओपनिंग सिलेक्शन एंड मेरे प्यारे सुनो वालों, खान सोना लॉयट महाबीर इन डेन हाग जिया इवेंट सेंटर, जहां लॉयट एक इंटरव्यू करेगा, तो लॉयट के इंतजार में हूं एंड देन बैन एक्सट्रैक्ट्स वेट रख, ठीक है।

Ja, mir Pierre Sinolo, als het goed is, dan bent u terug in, bij mij hier vanuit Studio Rotterdam. Burana manier, Mary Pierre Sinolo, live hè, en we proberen te schakelen. Maar het wil af en toe de techniek laat ons soms in de steek. Ik geef hem nu aan jou te horen, haar programma opening song horen. उस गीत के दरमियान इतने सारे लोगों ने ऐप किए हैं आप यकीन नहीं मानेंगे एक खावल मुझे स्खाकल स्ट्रक्स नलोइट अल्सो गुड इस ना द ब्रेक वन आठ उर एन वनेर इक दान टर्ग बेन सोयसो नलोइट मा हुलांग दात गा ड्यूर दात वेट इक नीट एन दान साल इक सभी एपर्स के लिए शुरू करेंगे जैसा मौका मिलता है गीत चलाने का ये कैन नो स्टेट्स ऐप ना 020-363-0808 Zo heb ik naam zei aardappetje. Als ik er terug ben. Na Lloyd Mahabir. Zo heb ik een liedje gegeten om te lengen. Zeroer ze zeroer. Jekienen. Enjoy Saturday Night Fever vanuit Studio Rotterdam. Well, en enjoy your weekend, mijn Pierre Sinolo. Hier in Rotterdam. Barisch horen he. En heel veel wind. Savita Singh, mijn Pierre Sinolo. En... Hoe heet zo ook alweer?

या बनी है गोल गप्पा मेरे प्यारे सुनने वालों। साधना लीला और सविता सविता सिंह जी, दिस इज यू आर मेरे प्यारे सुनने वालों। और चलो जयंत महावीर की आवाज में गीत हम आप तक पेश कर रहे हैं। 9 20 3 9 9 9 जहां पर आपको ऐप करना है और सभी ऐपर्स के नाम यकीनन और जरूर से जरूर हम गीत चलाएंगे। रिमझिम बरसे वर्षाएं लख पानी। जयंत महावीर, हियर ऑन यू आर मेरे प्यारे से।

0: प्रोडक्शन।
1: या जयन महावीर मेरे प्यारे सिने वालों, मैंने देखी जग की रीत वीत सब झूठे पड़ गए और रिमझिम बरसे ये बरखा ये पानी अतिस वर्तल ख्राइज हिर बहुमान स्टूडियो के बाहर। मेरे प्यारे सुनो, हम इस घंटे का आखिरी गीत पेश करेंगे ना खावा ना ब्रेक, ब्रेक की ओर 8 बजे के हम बढ़ेंगे। तमाम सूचनाओं के बाद है वो लॉयट मिट द वेट हाउडर फन एन हाँ इंटरव्यू और पता नहीं और कौन उनके साथ है, और लॉयट के बाद सेवा में फिर हम हाजिर रहेंगे लेकर ये प्रोग्राम एंड ना खावा क्या किनारे एपर्स कौन है जो ऐप किए हैं और किसके लिए मुझे खूबसूरत गीत चलाना है। सो इस गीत के बाद ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के उस पार मेरे प्यारे सुनने वालों, कहीं जाइएगा मत। अच्छा मिलते हैं वखान हीर मैथ विनय कल्पू। हाँ राइट right.

या ब्यूटीफुल मेरे प्यारे सुनने वालों, मैं वहां पर आ गया क्योंकि लॉयड का जो इंटरव्यू है मेड विदाउट फंडन, हाँ वो अभी नहीं हो पाएंगे। उमदक मनियर इयर्स वतानर्स मुदून एंड अल्स द वेथ हाउडर सूफेर इज डन ब्रेक लॉयड इन। लेकिन फिलहाल हम यहां से पहला एपर्स के नाम हम गीत चलाना शुरू करेंगे और हमारे लिस्ट पर हमारे प्रिय जो है हरेंद्र जी और चित्रा जी और मार्स ब्रूक, आप दोनों के एप आए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद एंड थैंक फॉर यूर सपोर्ट एंड अथवर्ट शेर हवार देर्थ, तहे दिल से धन्यवाद आप दोनों को कहते हुए मैं ये नगमा आप दोनों के नाम करता हूँ, हरेंद्र और चित्रा जी और मार्स ब्रूक।

ब्यूटीफुल सॉन्ग मेरे प्यारे सिनवालो, स्वीट मेलोडीज अमरीश पूर्णवाजी की आवाज में आप तक हमने गीत पेश किया है। घड़ी की तरफ मैं देखूं धनिया अतिस 10 मिनट बाकी है सरे 8 बजने में। एन लॉयटिस नतुलक डार इन जिया इफेंस सेंटर और उनकी इंतजार में है कि वो कब फिर अंडर आएंगे। फॉर द लास्ट के उस इंटरव्यू के बाद हम वापस लेंगे ये प्रोग्राम और दान खावे खोन सोंदर ऑन द ब्रेकिंग फेडर फॉर लॉयट टॉट 12 यूर सेलेक्टिवली एंटरटेनर। रोटरडम शहर में भी प्रोग्राम से जुड़े हुए हैं नताशा जी और राकेश, और आप दोनों ने ऐप किए हैं डंक्यूली वेल आपके ऐप के लिए। एंजॉय योर सैटरडे नताशा जी और राकेश जी। एकदम फेयर्स ऑन पेयर्स हमने एक गीत को तैयार करके रखा है एंड दैट इज फ्रॉम वीरेश यंग टैलेंट एंड इज मन खान मोई सिंह अपन लेकर बीच दो पुराने नगमाए इन्होंने फिर से गाए हैं सजाए हैं अपने ही रंग और ढंग में। तो वीरेश का ये नगमा फॉर नताशा एंड राकेश अर्थ

मुसाफिर हूँ यारो, ना घर है ना ठिकाना, मुझे तो बस चलते ही जाना है। या ब्यूटीफुल मेरे प्यारे सुन वालो, वीरेश की आवाज। रिमेम्बर दिस इज यू आर, आप ही का मनचाहत और फेवरेट स्टेशन उजाला रेडियो है ये। सैटरडे नाइट फीवर एकदम लाइव एंड डायरेक्ट यू आर के स्टूडियो रोटरडम से जो पेश हो रहे हैं। दो मिनट बाकी हैं सरे आठ बजने में। And wil je ook dat ik een liedje voor je draai? Een local song? Toen 020-363-0808 Parapa Awasje Aap Epkeri. Hi, hello, Aapka Shubnaam. Aapka Hase Epkeri. En natuurlijk, Toekontje Mange. Ik word Chaltanagma. Ja, een soulnummer. Sowieso ga ik na de klok van 11 aangerekend in me. Dan gaan we het rustig aan doen. Alleen maar soul. मैं देखता हूं अगले नाम जो हमारी लिस्ट पर है वो है प्रभाजी एट अम्सरडम सेंट्रम। प्रभाजी एट अम्सरडम सेंट्रम, थैंक यू वेल आपके ऐप के लिए। बेहद खुशी है हम कि आप ही चून किए हुए हैं उजाला रेडियो पर। एंजॉय सैटरडे नाइट फीवर और एंजॉय अपना वीकेंड। सागर मालिक जी का सबसे नया नगमा मैं प्रभाजी के नाम करता हूं। एतम से नाम सेंट्रम।

सागर मालिक मेरे प्यारे सिनोलो, चांदनी रात है, तू मेरे साथ है। वन ऑफ द फाइनेस्ट सिंगर्स हमारे होलैंड के अंडर में सागर मालिक। मेरे प्यारे सिनोलो, खान वेर इफ तुरुख नार जी आई फैन सेंटर, जहां लॉयट आपका दिल बहलाएंगे मेथन इंटर फ्यूचर, और लॉयट के बाद हम फिर सेवा में हाजिर रहेंगे। एंड लॉयट जी का ओवर नेम और भैया

आंखें मिलाने वाले या ब्यूटीफुल सॉन्ग दियाना सिंह मेरे प्यारे सुनने वालों, और नाट्योलक ये गीत गाए हैं अवतार बैंड के साथ बीच त्रिनी पॉप मेरे प्यारे सुनने वालों। और अगर मौका मिला तो और भी कुछ त्रिनी पॉप आपको हम सुनाएंगे। वंदरे सर हिल फिलाइट हुकूम, बहुत कम आपको हम सुनाते हैं, जितनी ज्यादा गीत निकल आते हैं उतनी ही कम आपको हम सुना दे पा रहे हैं। वक्त का दबाव है और गाने हैं बहुत ज्यादा मेरे प्यारे सुन क्लार इवेड लाइफ एंड सेंडिंग फनोट जी आई इवेंट सेंटर। आज आपने गया नहीं, शायद आप कल जाने वाले हैं। चेक www.brasafest.nl टिकटों के लिए। एन गा मोर्गे, het wordt spang, gezellig. Lekker eten, drinken, genieten van Bollywood. Een beetje muziek, market, shop, toekersakke. En morgen ben ik daar ook. Morgenmiddag. Ik ben er niet te lang. Ik ben er wel morgenmiddag. Ik ga ook lekker eten. En lekker genieten van het podiumprogramma. En misschien dat ik nog samen met Lloyd live ben op de radio. दिखते हैं कैसे कल का दिन गुजरते हैं। और आप आना चाहोगे दान कुम और हो उकनार उन्स स्टेंड सुकतोप एन वी वेट कुनो दार एवं मकार ओप ब्रासा फेस अम ब्रासा खेव तू जाने तो वांट ये मौका हरदम तो के ना मिली। एक बेनी ती मान दी ओवरऑल गात विल ये अम ब्रासा कुम दान। Want ik wil jullie ook zien, hè. Bahia Johnny Kalicheren uit Rotterdam. Aapke, epke liye. Dhanyavaad, hum kehte hain, dankjewel. Jab bhi aapko mauka milta hai, aap support karte hain, tune kiye karte hain. Maine geet ko taiyar karke rakha hai. Ek chutney mashup hai, mere pyare suno lo, ye geet jo hai, Johnny Kalicheren ji ke liye uit Rotterdam. The Sweet Melodies Forever uit Suriname, pesh karta hoon.

मिस्टर एजे और मिस्टर प्रोमो या ब्यूटीफुल चटनी मैशअप मेरे प्यारे सुनने वालों एंड द फॉर्मेसी स्वीट मेलोडीज फॉरएवर। घड़ी की तरफ मैं देखूं तो मेरे प्यारे सुनने वालों धीरे धीरे हम बढ़ रहे हैं 9 बजे की ओर और 9 बजे ब्रेक होंगे, इश्तिहारे आप सुनेंगे और उसके बाद में सेवा में फिर हम हाजिर रहेंगे लेकर प्रोग्राम सैटरडे नाइट फीवर लाइव एंड डायरेक्ट यू आर के स्टूडियो रतनाम से जो पेश हो रहे हैं 020-363-0808 जहां पर आपको ऐप करना है और इस प्रोग्राम में सभी एपर्स के नाम एक गीत मैं पेश करता हूं। एंड यू मुट वेल गेडुल्ड हैब अलहुवेल इक नीट सो फील नाम मेर ऑफ माई लाइज है, तो जितने नाम इस वक्त है कोशिश करूंगा अगले घंटे में सभी के लिए गीत चलाने का। मैंने एक गीत को तैयार करके रखा है मेरे प्यारे सुनोल मुकेश जी का एक नगमा और मुकेश जी उनका स्पेशल प्रोग्राम हमने बीते हुए बृहस्पतिवार को बनाए हैं दिल की आवाज में, क्योंकि मुकेश जी का 50वां पुण्यतिथि थे 5th यानी मेरे रोंस और उनके कुछ खास नगमाए हमने पेश किया है। उनका एक पॉपुलर सॉन्ग डट भरे फिर से गाया और सजाया गया है, वो नगमा पेश करने जा रहा हूँ। गाने वाले हैं लकी सिंह और फरमासी सबरोसो और ये गीत को हम नाम करेंगे आईफी जहांगीर के नाम अहित अमसदाम। धन्यवाद आईफी आपके ऐप के लिए।

झूला हुआ फसाना, हमको न था सुनाना, अब चुप ना रहो, कुछ आगे कहो कि ये फिर और क्या हुआ, फिर और क्या हुआ। विशाल करोल जी का आवाज में ये गीत हमने आप तक पेश किया है मेरे प्यारे सुनने वालों। एन बखले डोड फरमासी साब्रोसो सेवन मिनटें फोर द क्लॉक फन हाल्फ एल्फ सॉरी हाल्फ तीन ना बहुत स्नेल जाएगा ना नहीं अच्छे से सेवन मिनटें सात मिनटें बाकी हैं सरे नौ बजने में सेवन मिनटें फोर द क्लॉक फन हाल्फ तीन नेचुरली 020-363-0808 Wil jij ook dat ik een liedje voor jou draait? Een local song. To aapko app karna hai. 020-363-0808 Rajis uit Almere. Dankjewel Rajis G uit Almere. Aap kep ke lief. Dankjewel voor het afstemmen. Mashup तैयार करके रखा है दैट इज मैं देखता हूँ द फॉर्मेट्सी फ्री स्टाइल सूरीनाम का जो फ्री स्टाइल है ई फन द बेटर म्यूजिक इंफॉर्मेट्सी फन सूरीनाम उनका एक मैशअप राजेश के नाम एट अलमेर दंकीवेल मेरे प्यारे सुनने वालों आप ऐप करेंगे ना मुझे अलटेट इन मैन प्रोग्राम मुझे अलटेट टेनिस मैन प्रोग्राम हम बीच गेडल्ड है बट क्योंकि ये गाट देंगे मन हम Quat over save Kali app or Amar Ganoa Benail. Follow order se chijwa ja hai. Jaise app I under, oise hum git chalaila. And vandaag hadden we een beetje interruptie vanuit GIA Event Center. Hoe hier hekaren. Heb geduld. Het komt allemaal. Ik heb jullie allemaal in mijn vizier. Or sabhi ke liye geet hum chalayenge. Filhaal to Rajesh ke naam ye geet. Freestyle.

Freestyle, milí pěresinu, alo, Freestyle. Beautiful mashup, Here On You Are. Saturday Night Fever me. अभी कुछ देर में मेरे प्यारे सुनो एक जबरदस्त हवा आवा पेश करने वाले हैं मैं और वो भी एक लेजेंड जो गीत गाएंगे आप सभी के लिए। फिलहाल तो हम बढ़ चलेंगे डीओजी मिंटो फार्मेसी टू फेमस या सॉरी या या काश भी मेरे प्यारे सुनोल और डीओजी टुगेदर विद द टू फेमस क्रू गीत पेश करेंगे अब की बार और इसे हम नाम करेंगे भैया जॉय सुखू के नाम अथोफ्टोरप डंकीवेल जॉय सुखू भैयो बहुत दिनों के बाद आपने भी चून किए हुए हैं en je hebt het heel moeilijk gehad de afgelopen tijd. Dat weet ik. Maar je bent sterk. Power. Bas, je hier hem kennen, Jijn. Blijf sterk. Leven gaat door. We moeten door. Doe jij net toch. Bahia Joy Sukhuji. Bahut bahut dhanyabad. Aapka nikli. Enjoy your Saturday. Or... आप ये गीत को भी एंजॉय करें जो आपके नाम करता हूं

ब्यूटीफुल सॉन्ग मेरे प्यारे सुनने वालों, काश बी और डीओजी विद टू फेमस क्रू हियर ऑन यू आर सैटरडे नाइट फीवर है मेरे प्यारे सुनने वालों, और सुनने को आए हैं कि बहुत स्पंग और खसेलग है ये आई फैन सेंटर में, जहां बड़ा सा फेस्ट इस वक्त आज हो रहे हैं पहला दिन। और अगर आज आपको मौका नहीं मिला है मेरे प्यारे सुनने वालों, तो आप कल भी जा सकते हैं। एक हाउक मोड़ जिसमें फंदा हाउक निकल एंड नेचुरल फिया www.brassafest.nl टिकटे आप खरीद सकते हैं। दत्का नौका ने पोर्ट मार ऑनलाइन साल फील बेटर सेंग हम तो डून एंड कम खसेलग मिच फ्रेंड कैनसे इति प्रीमियो के साथ, और आप एंजॉय करें। अनुत म्यूजिक साल नीत लिख सबसे टॉप बैंड आज आए हैं, कल भी आएंगे, और खाने पीने का बहुत सारे स्टैंड है। यकांडा रोग लेकर शॉप पर तरह तरह की चीज है वहां, जहां पर आप शॉप कर सकते हैं। दिस इन एंड आउट बॉलीवुड वाइब्स उजालास ब्रासा मेला फेस्ट इंडोर समर एडिशन एंड हियर में स्लोए टू है अंबेचे नेचुरल द सोमर अफ नेचुरल। और आप देख रहे हैं बारिश हो रहे हैं, पता नहीं फिर मोईवेर आएगा या नहीं, ये बारिश रहेगा या नहीं, आगे चलकर किस तरह का मौसम होंगे कुछ पता नहीं। लेकिन हाँ ये पता है कि अगले गीत जो है मेरे प्यारे सुनने वालों, मैंने कहा एक लेजेंड को पेश करेंगे, विम दमरी जी की आवाज में एक नगमा पेश करेंगे। लीजिए एंड यार 80 बहन यार 90 जो रिलीज हुआ है, सेल्फ देंगे 1990 मार एक कानून मिस्ट्री में से अब, और इसे हम नाम करेंगे जो ऐप किए हैं जॉर्ज सर्जू मिस्र अत होफ डोरप वार एक फंडा होक वास मैं दोख्तर हूँ दार एंड एक पर सेल्फ होक 45 यार गवोंड होफ डोरप जॉर्ज सर्जू मिस्र जी के नाम दमड़ी का गाया हुआ गीत पेश करता हूँ एंड डंकी वेल फॉर ये एपिया भैया खनीत फन यू आर खनीत फन यू वीकेंड।

या ब्यूटीफुल मेरे प्यारे सुनने वालों, खूबसूरत पुराना नगमा सेवा में हमने पेश किया है द लेजेंड वेम नमरी जी की आवाज। रिमेम्बर दिस इज यूआर, और हम गीत जो अब की बार पेश करने जाएंगे इस फॉर माय कॉलीग ड्यूली ही लंग हैव मुतमिस कवि रानी, और इस कवि रानी प्रोग्राम सुन रहे हैं साम में थरमान सिद्ध सिंधाओ तो सहान फन ब्रासा मेला वे रिफ्टिंग हाउस। और लॉयड के प्रोग्राम में भी आपने कवि को सुना है, और कवि ने क्या कहा कि आने वाले बुधवार न मैंने करो कि न आफत मफोर मैं इन मिदाग इस कवि वेर तरुख एन ओ ओ ओ वट सैन वो ब्लै वन कवि जी वह हैव ये हेल फिल गमिस्ट ओक एक बहुत प्यार से आपके प्रोग्राम हम हमेशा सुनते हैं, और आपका फैंस जो है भी आपको कितने मिस किया है। तो कवि के नाम एन अ टू लुक फॉर योर मन, ड्राइव सेफ एंड एंजॉय दिस सॉन्ग। आपके नाम करता हूँ शेखर कुमार।

Ja, blijf mooi hè, Merpia is in alle. Het is al 22 jaar oud. De formatie Danza, Orieta, Shikhar Kumar. Ye dil tere liye hai, aur ye jaan bhi tere liye. इस घंटे का आखिरी गीत पेश करने जा रहा हूँ मेरे प्यारे सुनने वालों, और उसके बाद ब्रेक होंगे। ब्रेक के उस पार आप सभी से फिर जरूर से जरूर मिलेंगे हियर ऑन यू आर सैटरडे नाइट फीवर विद रतन फन आर्ट स्टूडियो रोटरडम। द लायन देवेंद्र सिंह सेवनाथ।

खुली पलक में झूठा गुस्सा और बंद फलक में प्यार, जीना भी मुश्किल मरना भी मुश्किल, करें तो क्या करें मेरे प्यारे सुनने वालों, कभी आर तो कभी पार। मेरे प्यारे सुनने वालों, धीरे धीरे धीरे धीरे इस ताल बहना 12 मिनट ओवर द क्लॉक 3 और ये है आप ही का मंचहट और फेवरेट स्टेशन उजाला रेडियो। मैं हूँ रतन राम दुलारे पांडे, सैटरडे नाइट फीवर पेश कर रहा हूँ विद द लोकल्स, और आप देख रहे हैं मिला रहा हूँ कुछ पुराने और नए इसमें। Ich habe nicht so viel Namen mehr auf meiner Liste, aber जो नाम है इस वक्त उन सभी के लिए गीत चलाने जा रहा हूँ यहाँ से। और पहला है सत्या जी, अतम सदम। सत्या जी बहुत बहुत धन्यवाद आपके ऐप के लिए। एंजॉय यू आर, एंजॉय सैटरडे नाइट फीवर। और रणधीर बद्री का गाया हुआ एक नगमा मिड फॉरमैट सी टू स्टेप, सत्या जी के नाम अतम सदम।

रणधीर बद्री, मेरे प्यारे सुन वालों, रणधीर बद्री कसम की कसम है कसम से, और हमको प्यार है सिर्फ तुमसे। ब्यूटीफुल सॉन्ग मेरे प्यारे सुन वालों, इन्होंने अपने ही रंग और ढंग में फिर से गाए हैं, सजाए हैं, और बहुत ही प्रेम और प्यार के साथ सेवा में आप सभी का हमने फिर पेश किया है। वहां ना अम्सटर्डम, मेरे प्यारे सुनने वालों, अम्सटर्डम में भैया सुनील जी प्रोग्राम से जुड़े हुए हैं, और हमेशा जब भी सुनील जी को मौका मिलता है, डन स्टूअर्ट है नेपियर सुनील जी, थैंक यू वेल आपके सपोर्ट के लिए, पावर के लिए। एंजॉय योर वीकेंड, और धमाकेदार सॉन्ग हमने तैयार करके रखा है स्टीफन धर्मपाल और आइवन, और वो भी आपके नाम करता हूं सुनील। आइटम से नाम

नाचे नाचे दी सोखा मेरे प्यारे सुनने वालों, स्टीफन धर्मपाल और आइवन्ना। घड़ी की तरफ मैं देखूं तो मेरे प्यारे सुनने वालों 5 मिनट बाकी हैं और वो भी सरे 10 बजने में। 5 मिनट ऑफ 4 o'clock फन हाल ऑफ एलफ एन वखान नार देन हेल्दर, वहां से एप आए हैं इल्स रामदयाल जी भी प्रोग्राम से आनंद ले रहे हैं, तो इल्स जी को हम कहेंगे बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेल आपके एप के लिए। मोटी माला भोला सिंह जी, इनका गाया हुआ एक नगमा हमने तैयार करके रखा है और इसे हम नाम करेंगे इल्स जी के नाम। एंजॉय योर वीकेंड, एंजॉय यू आर, एंजॉय सैटरडे नाइट फीवर और खास करके एंजॉय दिस सॉन्ग।

मोतीमाला भोला सिंह मेरे प्यारे सुनवालो, जिएंगे तेरे बिन कैसे जाना। खूबसूरत गीत मेरे प्यारे सुनवालो सेवा में जो हमने पेश किया है। अगले गीत मेरे प्यारे सुनवालो मैं पेश करने जा रहा हूं हेरवाल्डो मरकरी जी और उनकी प्यारी सी बेटी शरीदा। आप तीनों के नाम दारिन स्वाह खनीत फाइनल वीकेंड लेकर रिलैक्स। हेरवाल्डो जी मरकरी जी और शरीदा जी एंजॉय योर वीकेंड। एक बलीचे तैयार सेट एक गीत जो फिर से सजाया गया है बनाया गया है, उम्मीद करते हैं कि आप इसे बर्दाश्त करेंगे। थैंक यू लिवेल आपके लिए एंजॉय।

ये पर्दा हटा दो, जरा अपना मुख ना दिखा दो। देखो हम प्यार करने वाले हैं, कोई गैर तो नहीं। हम तुम पे मरने वाले हैं, कोई गैर तो नहीं। ब्यूटीफुल सॉन्ग मेरे प्यारे सुनने वालों। किस तरह से ये लोग सजाते हैं, बनाते हैं और अल्फाजे इतनी खूबसूरत कि इतनी खूबसूरत लगता है सुनने में। दिस इज यू आर मेरे प्यारे सुनने वालों, जहां पर द फाइनेस्ट लोकल्स हर एक शनिवार रात्रि को प्रोग्राम सैटरडे नाइट फीवर में आप तक पेश किया जाता है। वहां ही लमाओ अक्रॉस द ओशन मेरे प्यारे सुनने वालों, अटलांटिस नॉर्थ सी ट्वार्स डोर इंग्लैंड ट्वार्स डोर आयरलैंड एंड ऑन द अटलांटिस ओशियन ट्वार्स डोर न्यूयॉर्क और पता नहीं न्यू ऑरलींस जाकर पहुंचेंगे टेक्सस में। टेक्सस में वहां पर हमेशा मेरा साथ देते हैं जब ही ये लोग सुनते हैं ऐप करते हैं, हमारे बहुत प्रिय होंगे हैं। तो अजय और सुनीता जी और तमाम हिती प्रेमियों जो वहां पर शामिल हैं, बहुत बहुत बहुत बहुत थैंक यू थैंक यू थैंक यू। हाँ एंगल्स तनी चाहिए बोले तो थैंक यू ट्यून करने के लिए, क्योंकि आप पूरे वर्ष में देखेंगे तो चॉइस इतनी ज्यादा है। वारोपी का नाफ स्टेम एंड नंकीशे फॉर उजाला रेडियो और खास करके हमारे प्रोग्राम या डंग बारबेनिक, आप सभी को तहे दिल से धन्यवाद कहता हूं। मैंने गीत को तैयार करके रखा है, आप सभी को वहां पर नाचना पड़ेगा क्योंकि तायरा जो सुनाने वाले हैं, सुनीता जी अजय जी और जितने लोग भी वहां पर हैं, खमर फस्तान एंड एंजॉय दिस सॉन्ग एंड डांस विथ यू आर।

ब्यूटीफुल बैठक ब्लैंड बाय टीरा, मेरे प्यारे सुनने वालों एकदम मजा आ गया। एनिक बैन सो ब्लाइ, मेरे प्यारे सब बहुत खुश है हम कि हमारे जवान जवान जो कलाकार है हमारे देश का, हिंदी पॉप सीन में हमारे देश का जवान जवान कलाकार बैठक गान का इतना प्रमोट कर रहे हैं। ऐसे दुनत होत और इन सभी के कारण बैठक गान अभी जिंदा है और चल रहे हैं, और इसी तरह से बैठक गाना जो है हमारा जो है प्रिय, इसी तरह चलना चाहिए। एनिक विल दार फॉर ऑल द यंग आर्टिस्ट फ्रॉम नीदरलैंड नतुलन ओक पडांक। मेरे प्यारे सुनो लोग, कुछ देर तक त्रिनी पॉप सॉन्ग्स आप तक पेश करेंगे, और त्रिनी पॉप के सॉन्ग्स आपको सुनाते सुनाते हम बढ़ चलेंगे 11 बजे के ब्रेक की ओर। 11 बजे के बाद अली मसूल्स, तू जाने दो।

रफीक प्रसाद मेरे प्यारे सुनने वालों, और मैं आगे बढ़ूंगा ये प्रोग्राम को, और आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको बता दूं मेरे प्यारे सुनने वालों की ब्रस एफएस आज पहला एडिशन था डेनहाग शहर में, ये इवेंट सेंटर में। और अगर आज आपको मौका नहीं मिला जाने के लिए, प्रबीर मोर खतखान टिकटों के लिए www.brasafest.nl। मैं भी कल जाऊंगा क्योंकि आज मौका नहीं मिला, एक वफंदा हो खान मारत इसमें नहीं खलुक्त। Maar morgen ga ik zeker. En het is morgen vanaf 2 uur. Do bij je. Ratri me bara bij je tak. The best of the best. Hamari jo Hindi pop scene ka jo formaties hai, benches hai. Woh sab shamil honge. Aaj bhi bahut saare aaye hai. Lloyd zal live uitzendingen verzorgen. Aur shayad mein bhi उनका साथ दूंगा। एक वेट नो नीट हुआ था लमाल इन खरी गलती इस मोर। फिलहाल तो हम जाएंगे, एंजॉय करेंगे और खाना खाएंगे, नाचेंगे, म्यूजिक का एंजॉय हम करेंगे भी, लोगों से मिलेंगे। और जिसको अतिशीन फप्लिक्टिंग जो ब्रासा करना चाहेंगे, अम्ब्रासा इज ऑलवेज नेचुरली वेलकम। उजालास ब्रासा मिला फेस इंडोर समर एडिशन जिया इवेंट सेंटर डेनहाग में मेरे प्यारे सुनने वालों। आखिरी गीत इस घंटे का, उसके बाद में ब्रेक होंगे 11 बजे का, और ब्रेक के बाद अली मसूल स्टिल मिडनाइट।

या तेरे लिए इस दुनिया में आए और तेरा साथ निभाएंगे। द किंग ऑफ हिंदी पॉप, मेरे प्यारे सुनने वालों, उमर वागित हुसैन की आवाज। घड़ी की तरफ मैं देखू तो 12 मिनट गुजर चुके हैं मेरे प्यारे सुनने वालों, 11 बजकर रात्रि में 12 बजे तक आपका साथ हम देंगे। और इस आखिरी घंटे में मेरे प्यारे सुनने वालों, किसी ने ऐप नहीं किया है और जितनी ऐपर्स था उन सभी के नाम से गीत चला चुके हैं, मौका दिया जा रहा है। ये का नुक्स इज वेल ऐप एन दन सालिक वेल नीचे फुए द्राए मदद साल वेल एन सोल सेंग 020-363-0008। जब उमर हमने पेश किया है तो चलो निजाम को भी पेश करता हूँ। उनका एक नगमा, हियर ऑन यू आर सैटरडे नाइट फीवर में।

निसाम वागित हुसैन मेरे प्यारे सुनने वालों, खूबसूरत गीत जो इन्होंने गाकर पेश किया है, एंड इट इज फारिस बरसाती मेरे प्यारे सुनने वालों, इश्क सूफियाना। रिमेंबर दिस इज यू आर सैटरडे नाइट फीवर विद रतन।

सागर मालिक और निशा मडारन मेरे प्यारे सुन वालों, अब नाम मोहब्बत है, खूबसूरत गीत दोनों ने मिलकर गाए हैं। टू ई फंतासिस संगर्स संगरेस सागर मालिक जी और निशा मडारन, ओनली हियर ऑन यू आर मेरे प्यारे सुन वालों। भरपूर आप एंजॉय करें सैटरडे नाइट फीवर और लोकल का ये प्रोग्राम मेरे प्यारे सुन वालों, पांच घंटे का। आज देखो ना, हम आन पड़े हैं इस प्रोग्राम का आखिरी आधे घंटे, और कुछ नगमाएं हैं मेरे प्यारे सुन वालों, दिलचस्प नगमाएं हैं जो आपकी सेवा में पेश करना चाहूंगा। जैसे कि सुबी का ये नगमा कि तेरा फितूर एकदम फर्स्ट ऑन द पेर्स मेरे प्यारे सुन फॉर्म में खिस्र आउटकम हियर ऑन यू आर फंडा।

Tira Futur mera pyara suno lo aur ye tha Subi ekdam fresh on the pairs mera pyara suno lo khisra uitgekomen aaj you are per humne aap tak pesh kiya hai मैं देखता हूँ प्रोग्राम से जुड़े हुए हैं और अभी अभी आए हैं वो भी बरासा फेस से एन दन माखत हम दचेना बरासा फेस पे खवेस और अब घर आए हैं रोहनी कल्लू जी एत रोटरडाम दंकीवेल आप कैब के लिए एन खूब दचे खनोत है फन बरासा फेस शेखर कुमार और अरुणा का गाया हुआ एक नगमा हमने तैयार करके रखा है तो रोहनी कल्लू जी आपके नाम करता हूँ

धीरे सिवाना किसी का बनूंगा। ब्यूटीफुल सॉन्ग मेरे प्यारे सुनवालों, और सागर मालिक जी ने वो ब्यूटीफुल सॉन्ग फिर से गाए हैं, सजाए हैं और आप तक हमने पेश किया है बहुत ही प्रेम और प्यार के साथ हियर ऑन यू आर सैटरडे नाइट फीवर में। अगले गीत जो हमने तैयार करके रखा है मेरे प्यारे सुनवालों, मनोज मढ़ाई और रीना जी एस अवार्ड प्रख्त बखलाइत डोर माइस्ट्रो ज्वाला पेश करता हूं नगमा।

पास है मेरे प्यारे सुनने वालों, खूबसूरत गीत सेवा में जो पेश किया गया है अवखाना सागर मालिक। मेरे प्यारे सुनने वालों, शिखर कुमार ओ मेरी महबूब,

0: शेखर कुमार मेरे प्यारे सुनने वालों, शेखर कुमार की आवाज।
1: This evil game is on check. It's on the look. Roll it. Okay.
0: मेरे प्यारे सुनो, आखिरी गीत मैं पेश करने जा रहा हूँ और इस आखिरी गीत को हम पेश करेंगे स्कीफनिंग शहर में जो रहते हैं भैया लक्ष्मण जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपके ऐप के लिए। शुभ रात्रि, एंजॉय योर वीकेंड। आखिरी ये गीत मैं आपके नाम करता हूँ विशाल क्रूल, इनका गाया हुआ। मेरे प्यारे सुनो लो, जिस तरह से आज ये प्रोग्राम सजाया गया है, बनाया गया है, उम्मीद और आशा करते हैं कि आप सभी ने भरपूर भी पसंद की है। हम आप सभी से फिर मिलेंगे बहुत ही जल्द। तो आज्ञा चाहता हूँ, रहा फूल तो फिर खिलेंगे और रहा ये खूबसूरत जिंदगी तो हम जरूर फिर मिलेंगे। सभी को रतन का प्यार भरा नमस्कार और खुदा हाफिज़। टेक केयर और रिमेम्बर, आई लव यू ऑल।

अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ राहत फतेह अली खान और ये है उजाला रेडियो। उजाला रेडियो को सुनते रहिए और मधुर मधुर संगीत जो है वो सुनते रहिए उजाला रेडियो पे, और मेरे भी गाने सुनिए, औरों के भी सुरीले गाने सुनिए।